النهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
5: Hukmarani layak kuch na kuch karna paundo.
6: करवाएंगे हम दहशतगर्दी के बारे में बात करेंगे हम ये कहेंगे कि बलूचिस्तान तो हाथ से निकल रहा है क्या हो रहा है आए हमसे बात करें टॉक विद अस हमें अपीस करें जिस तरह आप पहले करते आ रहे थे नो वी डोंट वांट टू टॉक वी विल टॉक विद द एक्चुअल स्टेक होल्डर विच आर द पीपल यू आर नॉट द एक्चुअल स्टेक यू आर ओनली स्टेक होल्डर इन योर ओन पर्सनल एंड इन योर ओन फैमिली वॉच नॉट ओनली पीपल ये उन्हें प्रॉब्लम कि हमें क्यों नहीं अपीस किया हमारे आगे पैरों का हाथ नहीं लगाया जाए हमसे बात करें क्योंकि उन्हें तो ये आदत है कि ये लेडीज की जो फोर्स है ये मेरी सरदारी मेरी जाती फोर्स है
5: बलोचिस्तान जा केतरा ही सरदार सदीर दहशतगर्दी जो हिस्सो आहिनि ही गैर कानूनी कारोबार जे परमिट ऐं सूबे जे बजट मां हिसो घुरनि था चवनि था त हिसो न ॾींदो त दहशतगर्दी कराईंदा उहे माण्हू लेविस फोर्सिस खे बि पंहिंजे सरदारी फोर्स सम्झनि था हीउ चाहिनि था त बलोचिस्तान अॻिते न वधे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी बलोचिस्तान में थींदड़ दहशतगर्दी जा सबूत मीडिया खे ॾेखारे छॾिया DGISPR चयो त ॼाणी वाणी तासुर पखेड़ियो पियो वञे त बलोचिस्तान जूं हालतूं ख़राब आहिनि दहशतगर्दनि सां ॻाल्हियुनि जी का बि गुंजाइश न आहे दहशतगर्द रियासत जे साम्हूं झुकनि ॿी सूरत में ख़तम कया वेंदा
7: बदकिस्मतीअ सां असां हार्ड स्टेट न आहियूं हार्ड स्टेट जो मतिलबु अहिड़ी रियासत आहे जिते आइन ऐं कानून सभिनी लाइ बराबरि हुजे जिते समूरा मामला आइन ऐं कानून मूजिबि थियनि हार्ड स्टेट जो मतिलबु इहो आहे जिते का बि अछराफ़िया न हुजे हार्ड स्टेट जो इहो मतिलबु हरगिज़ न आहे त मिल्ट्री रियासत हलाईंदी हुजे DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी चयो आहे त रियासत सां वफ़ादारी हर शहरीअ जो बुनियादी फ़र्ज़ आहे रियासत आहे त असीं आहियूं रियासत आहे त सियासत आहे
6: What is anything common between India and Afghanistan? So I DNA. The only thing common amongst them is that is उनकी डिप्लोमेसी उसी का काम है इसलिए आप देखें कि what is common between फितनाल हिंदुस्तान एंड फितनाल खवारिज
5: भारत ऐं तालिबान जो DNA हिकु आहे भारत हक़ ऐं अफ़गान तालिबान उन जा ग़ुलाम आहिनि अफ़गान तालिबान दहशतगर्दनि खे कारोबार तौरु इस्तेमालु

0: दर्द या पट्ठों की। तफरी से रिश्ता जोड़ो, सुनते रहो सिंध का हर गोशा।
1: GAFM नेटवर्क से जुड़ा,
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
0: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
0: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
0: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
0: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
0: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
0: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
0: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
0: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
5: अब आपकी खूबसूरती का फैन।

0: तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते बसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बदलता रहो।

में आप बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन सोप अगर आप कोई भी अच्छा सा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइट एज का ब्यूटी सोप अवेलेबल है, और साथ ही साथ आपको व्हाइट एज में जो है ना वो फेस वॉश भी मिल रहा है। तो फेस वॉश भी अगर आप लेना चाहते हैं, इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लाजमी ट्राई करके देखिएगा। व्हाइट एज का जो फेस वॉश है ना, वो विटामिन सी से तैयार किया गया है, जो कि आपके चेहरे पर अगर विटामिन सी की कमी होगी ना, तो उसका भी पूरा इंतजाम है जनाब। और उसके अलावा व्हाइट एज फेस वॉश के अंदर विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ई भी एड की गई है, और उसके अलावा ये इतना क्रीमी फेस वॉश है। तो जनाब आप जरूर अगर कोई अच्छा सा फेस वॉश और अच्छा सा सोप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइट एज फेस वॉश और व्हाइट एज का जो सोप है वो आप ट्राई कर सकते हैं, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए व्हाइट एज का डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब भी अवेलेबल है मार्केट में। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बताते चले। तो व्हाइट एज का ये डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब है, अगर आप परचेज करने जाते हैं तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब कहकर इसे परचेज कर सकते हैं, जो कि मेडिकल डेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि फुल जड़ी बूटियों से इसे तैयार किया गया है। ये जनाब काम ये करता है कि आपके चेहरे पर जो एकनी होते ना, जो जिद्दी एकनी या फिर एकनी के निशानात, कोई कट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कोई ऐसा निशान बचपन से लेकर आप घूम रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलता जो कि हम इस्तेमाल करें तो हमारे चेहरे पर ये निशानात हो, ये जितने भी मार्क्स आ जाते हैं या फिर कोई चोट का निशान भी अगर आपके स्किन के ऊपर मौजूद है, तो वो तमाम हट जाएंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब आप नाम लेकर तलब कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, और ये पर्सनली मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि भाई मेरी भी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, मेरे चेहरे पर भी एकनी जो है ना वो आते हैं तो फिर जाने का नाम नहीं लेते, अगर एकनी एक मरतबा तो वो अपना बहुत एक जिद्दी सा निशान भी छोड़कर जाता है, क्योंकि चेहरे पर जो निशानात है उनका भी खात्मा करता है, और कुल मिलाकर बहुत अच्छा सा आपको रिजल्ट देता है, आपकी स्किन बेदाग हो जाती है, क्लियर हो जाती है, और परफेक्ट आपको हसन मिल जाता है। तो डॉक्टर पिंपल एंटी एकनी ट्यूब आप इस्तेमाल करके देखिए, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये कि आप सुबह को भी लगाएंगे और रात को भी लगाएंगे, यानी कि दो मरतबा लगाइए। लगाने से पहले अपना फेस वॉश लाजमी कीजिएगा और अच्छे से अपने हाथों को भी क्लीन कीजिएगा, क्योंकि अच्छे और धुले हुए हाथ जो होते हैं ना जरूरी होते हैं। अगर आप बार बार आप हाथ लेते हैं तो आप बार बार फेस पर हाथ नहीं लगाया करें, अगर आप हाथ लगा रहे हैं तो आपका हाथ जो है ना वो क्लीन होना चाहिए, अच्छे से आप धोएं अपने हाथ को क्लीन करें, उसके बाद अपने चेहरे पर जो है डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करें। ये जी तमाम वो प्रोडक्ट हैं जो कि ऑल स्किन के मुताबिक तैयार हैं और नेचुरल अज्जा से तैयार किए गए हैं, आप लोगों के लिए कोई भी इसके अंदर ऐसा नुकसानदार अज्जा नहीं एड है कि आप लोगों की स्किन को नुकसान पहुंचाएंगे, बहुत अच्छे बहुत ही सोबर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ट्राई करके देखिएगा। और इसके साथ साथ ना मिलने करीबी जनरल स्टोर्स पर अगर अवेलेबल अभी तक नहीं हुए हैं तो नहीं मिल रहे तो उसके लिए आपको नंबर बताते हैं जिसके ऊपर आप राबता करके अपनी करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा सकते हैं। तो नंबर से जरा नोट करते जाइए। ओके जनाब 0332738439 0332738439 और दूसरा नंबर है 03125

अच्छा बिल्कुल जी, पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए। बताइए कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। नियाज हुसैन मलिक भाई हमारे साथ है, और नियाज हुसैन मलिक भाई क्या कहते हैं, हेलो जी हेलो। और अली मुर्तजा आ चुके हैं, सलाम गुड आफ्टरनून हेव अच्छा हाउ आर यू, मैं ठीक हूँ, आप बताएं अली मुर्तजा आप कैसे हैं। और मूसा कोरी कहती है सलाम अलैकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। हजार भाई कहते हैं हम भी आपके साथ साथ हैं, शो लाजवाब बेहतरीन जबरदस्त, थैंक यू हजार भाई। अच्छा ना खाला वहाँ हजार भाई कहते हैं सिस्टर मेरी तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को सलाम, आपकी तबीयत कैसी है। हम सब ठीक हैं माशाल्लाह जी, माशाल्लाह ठीक रहिए और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। बराए पूछा ताका की आयो क्योंकि ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा एजन अरबानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम इन मुल्ला अलैहिस्सलाम मदर कहते ओ माय फेवरेट मैडम मुस्कान लाड़कना की पहचान कैसी है आप और आपकी तबीयत कैसी है। माँ भी बाबा सफा भली आया, काम बताया की आयो। अखलाक भाई कहते हैं कि टॉपिक आंसर बचपन वापस न बाबा न वरी मेयू चारणी पवंदी मन तक मेयू चाराईंदा हुआ।

लुब्बी हमारे साथ मौजूद है। लुब्बी कहती है अस्सलाम वालेकुम सुनील जानी, क्या हाल चाल है? मैं भी आपके साथ साथ बहुत दिनों के बाद आज फिर से शामिल हुई हूँ। कहाँ थी तुम वैसे बताओ तो, अतो न पतो खेरानी। अच्छा ये असदुल्ला अब्बास हमारे साथ कहते हाय हेलो। नसरुल्ला सुमरो भाई हमारे साथ कहते हैं माँ अगर कोई किताब लिखियो तो गेरन के पांजो पांजन के गेर लिखन दस। सेम हियर मामी मामी मामी पांजन एडा कम करी करी करी नफरत कराए छी पान का। सिंधी जो सॉन्ग बुधाए जो बिल्कुल बिल्कुल मां कोशिश क्या थी तांजी पसंद जा गाना हलाइंदा सी। और मूसा कोरी भाई कहते अदी क्रीम कारे के अच्छो करे थी बिल्कुल अच्छो करे छी सफा चिमकाए छी तांजे चेहरे के सो तां व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करे दिस जो हुए गाने जे के सा बचपन में बुधंदा सी बचपन में असला डिस्को सॉन्ग्स हुंदा।

भी तो मुझे बुधाईंदा हलो नी। अच्छा किशोर भाई कहते हैं टॉपिक में अपनी बचपन के वो हसीन दिन रोज फील करता और स्कूल के वो दिन जब मेरी छुट्टी होती थी स्कूल की गेट पर खड़ा हो जाता था या भाभी की खबर आगा भी बुधायास थी कुटकी खा रहा आगे ये न सुधर रहता अच्छा असदुल्ला अब्बास कहते हैं हाय आई लाइक यू शो थैंक यू हेलो वासा भाई एसन कहते हैं वैसे अज अच्छा चौथा आज आवाज क्लियर न थो अच्छी बियो एफएम गडजी वयो वा अवां सा भाई गड हलन थियो ये छो यो छा

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है। तो व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, दोनों ही कमाल के प्रोडक्ट्स हैं जनाब। आप कौन से इस्तेमाल करेंगे या फिर कर रहे हैं मुझे जरूर बताइएगा। और इसके साथ साथ व्हाइट एज लवली क्रीम के बारे में भी आप लोगों को बताएं, जो कि बहुत ज्यादा एक जरूरी और बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है। ये तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, तो इसके बारे में आप लोगों को मैं जरा बताती चलूँ। तो व्हाइट एज लवली क्रीम एक फेयरनेस क्रीम है। फेयरनेस क्रीम में वो क्रीमें होती हैं जिन्हें आप हर उम्र में इस्तेमाल कर सकते हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मेकअप के तौर पर भी लगा सकते हैं। अगर आप कोई काम काज कर रहे हैं तब भी आप व्हाइट एज लवली क्रीम इस्तेमाल करेंगे चुटकियों। ऐसा नहीं होगा कि भाई क्योंकि गर्मी का मौसम आ चुका है, गर्मियों में भाई हमसे मेकअप नहीं यूज किया जाता, मेकअप नहीं लगा पाते, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का थोड़ा सा मिकदार लेकर अपने चेहरे पर अप्लाई कर देंगे। ये चुटकियों में आपको रेडी कर देती है। और व्हाइट एज लवली क्रीम के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, तो ये रेडिएंट अल्ट्रा विटामिन्स का फार्मूला है जिसके अंदर भाई साहब 3 विटामिन्स के कैप्सूल एड किए गए हैं। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती, इसके अंदर सनस्क्रीन भी ऐड की गई है, यानी कि आप लोगों को खूबसूरती मिले और खूबसूरती के साथ साथ आप लोगों को जो है ना वो आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहेगी। अगर आप व्हाइट एज लवली क्रीम लगाकर बाहर जाते हैं कोई काम काज से, तो आप लोगों की स्किन पर ये जो सूरज के ये खतरनाक असरात आते हैं ना, उनसे भी आपकी स्किन की जो ना वो बचत होती रहे। तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना सिर्फ इसलिए कि आपको खूबसूरती चाहिए बल्कि इसलिए कि आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फेयरनेस क्रीम है, इसे बच्चे बूढ़े जवान हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, मर्द हज़रात ख़वातीन ऑल स्किन टाइप के लिए है। और इसी के साथ साथ मजे की बात बताऊं, बिल्कुल जी व्हाइट एज लवली क्रीम को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दिन में कभी भी, यानी कि सुबह को लगाएं, दोपहर को, रात को, जब आपका दिल करे तब लगाइए। बस आप चुटकियों में रेडी हो जाएंगे और आपकी स्किन ग्लो करती रहेगी और आप हसीन हो चुके होंगे।

दर्दी दिल हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, कहती माय मोस्ट फेवरेट आरजे चंदा जानी, आप कैसी? वेलकम टू शो, आपको भी वेलकम कहा जाता है माय स्वीटी। अच्छा सालार खान हमारे साथ ही, वालेकुम अस्सलाम, कहती क्या हाल है जी? मैं सालार खान फ्रॉम कोटड़ी। सालार भाई आपको वेलकम कहा जाता है। कहते मैं कोटड़ी से शामिल हुआ हूँ, FB पर शो सुन रहा हूँ, भाईजान आपको वेलकम कहते हैं। और उसके अलावा दर्दी दिल कहती है कि मेरी दुआ है आपकी, मुबारक आंखों के सब ख्वाब हकीकत छेरे। आमीन आमीन। वैसे मैं ख्वाब घट नजर नहीं आया। कहती मैं भी आ गई शो में भागते भागते। अरे भाई चलो बेरो बेरो सा पटो अस नसरुल्ला भाई कहते केनो प्यारे से थी बुधाए कहानी मुखे भी लगे ना मैं प्यार से गल नहीं आया पर यो सिर्फ तमाल आए बेओ गए जिला। वैसे मैं बड़ी कलेशी औरत हूँ।

गीतांजलि के अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो सोचम त अवां जो हाल अहिवाल पुछां अवां जो शो तमामु सुठो आहे तव्हां जो आवाज़ तमामु सुठो आहे ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम तमामु सुठी आहे वाह वाह वाह वाह थैंक यू सो मच ऐं मुंहिंजो हाल सफ़ा भला तव्हां ॿुधायो कीअं आहियो

अच्छा यह बात बिल्कुल ऐसा ओरिजिनल न था हलाय सकूं ऐसा कॉपी था हलाय सकूं था यस शातर माइंड अच्छा हैप्पी कहती अगर आज आज अपन मिल जाए तो मैं सबसे पहले क्या करेंगी 6, 7 और 8 के दिन याद करूंगी क्योंकि ये वो दिन है जब मैं और मेरी फ्रेंड्स बहुत मस्ती करती थी और मेरी फ्रेंड्स मुझे बहुत तंग करती थी ये टॉपिक आंसर ओके ओके

हजार भाई कहते हैं बचपन अच्छा था, अभी तो बस यादें हैं। हाँ ना, लुबी कहती है जी जी खेड़ा, बस अब रोज शामिल होंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। ॿियो ॿुधाए किथे पई रसी वसी? ऐं उनखां अलावा वाइटी जो कहिड़ो प्रोडक्ट इस्तेमाल कयो पिया? ऐं उनखां अलावा तव्हांजे अर्ज़ी भुटो में मिलनि था कोन? कहिड़े कहिड़े जनरल स्टोर से अवेलेबल थिया आहिनि ऐं किथे किथे कोन था मिलनि? इहो बि ॿुधाइजो, जीअं तव्हांखे ॿुधायो वञे त बाबा तव्हां कीअं पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते वाइटी जा तमामु प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराए सघो था। सो हाणे ते टाइम थियो आहे बाबा वठूं था न्यूज़ ब्रेक, उनखां पोइ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक हूंदा। वापसी जल्दी तव्हांजी मोटींदासीं, तव्हां काॾे न वञो, इते वेठा हुजो। मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटी एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय वाइटी ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाएं आप भी खूबसूरत हो जाएंगे।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
1: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, fauri khatam. Aaj hi ka naam lekar talab kare.
2: Ab aap sunenge FM Network par KTN News.
3: System jo hai ye bas ab khatam ho chuka hai. Ye system jo hai ye ab aage chalne ke jo hai wo kabil nahi raha. ओ भाई इस सिस्टम में तुमने 30 साल का सफर जो है वो 3.5 साल में तुम कहां से चले हो और कहां पहुंचे हो और अब तुम्हें आगे पता चला है कि ये सिस्टम जो है खराब है ये चल नहीं सकता।
4: वजीर आजम जो सलाहकार राणा सनावला जो पीपल्स पार्टी ते वार शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो के मुल्क टोड़े वजीर आजम थियण जो तानो ॾेई छॾियो। घरू वजीर मोहसिन नकवीअ ते बि तनक़ीद। मुज़फ़राबाद में चूंड जलसे खे ख़िताब कंदे राणा सनावला चयो त जेकॾहिं तव्हां नवाज़ शरीफ खे चवंदा त सदाई धांधली करे वज़ीर आज़म थियो आहे त पोइ हिते ई ॻाल्हि बि थींदी आहे त को मुल्क टोड़े पहिरियों भेरो वज़ीर आज़म थियो हो। वज़ीर आज़म जे वोटनि खे अवां फारम 47 जो सॾींदा त ॿुधायो सदर खे मिलियल वोट कहिड़े फारम जा आहिनि। ज़रदारी साहब जो ॿियो फर्ज़ंद चई रहियो आहे त सिस्टम ख़राब थी चुको आहे, अॻिते न वधी रहियो आहे। इक़्तदार जा मज़ा वठण बाद ओचितो खेनि सिस्टम ख़राब लॻण लॻो आहे, जेका अजीब ॻाल्हि आहे।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
5: यारे ही गोडन जो सूर है चेल जो।
2: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
6: छा तव्हां या तव्हां जा प्यारा हॾन ऐं जोड़न जी तकलीफ़ुनि में मुब्तला आहिनि? हाणे परेशान थियण जी ज़रूरत नाहे। अव्हां जे पंहिंजे शहर मोरो में हॾन जी बीमारियुनि जो माहिर ऐं कुदरती फिरियल पेरनि जे इलाज जो माहिर डॉक्टर नजीब रहमान कलहोड़ो, MBBS, MS, आर्थोपेडिक सर्जन, असिस्टेंट प्रोफेसर, जंहिं वटि मौजूद आहिनि जदीद ऑपरेशन ऐं मौसर इलाज जूं सहूलियतूं। हर आचर ते सुबुह जो 9 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं ऐं औरतुनि जी बीमार आदर MGO गायना चेकअप हाणे अव्हां जे शहर में मौजूद आहिनि। रोज़ानो मंझंदि 1 वॻे खां शाम 7 वॻे ताईं। एड्रेस: दस्तगीर आर्थोपेडिक एंड ट्रामा कॉम्प्लेक्स। राब्तो करियो, राब्ते जे लाइ सेव लेटर। कॉन्टेक्ट नंबर 0321828459403040376381।
7: क्या आप महंगे इलाज और ऑपरेशन के बगैर शिफा चाहते हैं? तो मिलिए इस्लामाबाद की मशहूर व मारूफ खानदानी होम्योपैथ फराज कामरान, TA चेयरमैन, MDH, RHMP, 25 साल से ज्यादा तजुर्बेकार, हर किस्म की बीमारियों का इलाज बगैर ऑपरेशन। माहिर अमराज, गुर्दे और मसाने की पथरी, खूनी बादी बवासीर, हर किस्म का बुखार, मलेर बुखार, दम्मा अमराज, ब्लड प्रेशर, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, अर्कुन निसा, जिस्मानी असाबी और दिमागी कमजोरी, मर्दाना और जनाना पोशीदा अमराज के इलाज के लिए तशरीफ लाएं। एड्रेस: आलमानी मेडिकल सेंटर, दादू रोड, मोरू। मजीद माली राब

0: का नंबर 318-404-217 0318-40-217।
1: खुशखबरी अहां जे पांजे शहर मोरो में हैदराबाद होम्योपैथिक क्लिनिक दादू रोड मोरो जिते फैमिली फिजिशियन होम्योपैथिक डॉक्टर शाह बेग खोसो माहिर अमराज एलर्जी नजलो जुकाम दम सहको खंग टीबी मलेरिया मुदे जो बुखार फालिज जोड़न संधन कुनरग आई अध मथे जो सूर गुदूद पित्ते मसाने गुर्दे जी पथरी आई नक जी हड्डी जो होम्योपैथिक इलाज कयो वने थो। क्लिनिक जुम्मे खां अरबा डी ताई सुबुह जो 10 बजे खां शाम जो 4 बजे ताई खुलियल रहंदी आहे। नोट जुम्मो छंछर आई आचर ते आयल मरीजन जो चेकअप फ्री में कयो वेंदो आहे। एड्रेस हैदराबाद होम्योपैथिक क्लिनिक नस्त पुराणो यूटिलिटी स्टोर दादू रोड मोरो।
2: वधीक राब्ते ऐं मालूमात जे लाइ मोबाइल नंबर 0325-82-27-386 0325-82-386।
3: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और चुनाव लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बता चलाते जा रहे हैं। आप हमें मैसेज कर रहे हैं 8881 पर या फिर आप हमें कमेंट कर रहे हैं हमारे फेसबुक पेज के ऊपर। सही है जी, तो शामिल प्रोग्राम होते जाइए और यहाँ पर हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में। तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके जी, तो मैंने आज आप लोगों से सवाल ये पूछ लिया है कि आप मुझे बताएं फर्स्ट कली अगर आप लोगों

डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया। क्रीम के साथ आप वॉश भी मिले, ये दो प्रोडक्ट अभी भी जनाब आप कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोग और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में एक एसी आपकी जब भी रिपेयर कर देती है। अक्सर औकात हम इस चीज को लेकर भी बड़ा परेशान हो जाते हैं कि हमारी अगर स्किन सेंसिटिव हो तो सेंसिटिव स्किन के ना कोई भी सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि हमारी सेंसिटिव प्रोडक्ट सूट नहीं कर पाती है। तो आपके लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम मार्केट में इन हो चुकी है और डी स्किन ब्यूटी माइक्रोबीड्स फॉर्मुलेशन है, अल्फा आरबुटीन है, कोजिक एसिड है, ग्लूटामेट है, जो कि आपकी स्किन को डीपली क्लीन करती है, आपकी स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करती है और आपकी स्किन के अंदर तक जो है ना जाकर आपके चेहरे पर जितने मसाले हैं वो सारे खत्म कर देते हैं। तो अगर आपके चेहरे पर रिंकल्स काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं, आपकी रंगत जो है वो सांवली हो चुकी है, चेहरे पर एक्ने प्रॉब्लम है, एक्ने के निशानात है, तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करके अपने चेहरे पर ये प्रॉब्लम्स भी दूर कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्किन जो है वो गोरी भी हो जाएगी। मर्द हजरात हैं, खवातीन हैं, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है डी स्किन ब्यूटी क्रीम को। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाइए, फुल डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर जनाब क्रीम को तैयार किया गया है, तो कोई टेंशन की कोई घबराने वाली बात भी नहीं है। ऑल स्किन के लिए है जनाब, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंसिटिव स्किन वाले लोग लगाएंगे डी सकते हैं, जितने भी लोग आप हमें सुन रहे हैं बिल्कुल जी आप सब लोग डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है। और जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, इसकी तो मैं क्या ही आप लोगों को बात बताऊं, ये इतना प्यारा फेस वॉश है ना, कैसे आप लगाते हैं तो आप लोगों को एक ऐसे भैया

0: हाय को श्री कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं, सारे प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ। खान कहते हैं बचपन बहुत अच्छा गुजरा, क्या बात है जी। दीदार अली बिरोही कहते हैं अर्ज करता हूँ तेरे इश्क में मिलावट है इत्र और शराब की, कभी हम महक जाते हैं तो कभी हम बहक जाते हैं। बेहतरीन, जबरदस्त, वाह वाह वाह वाह वाह। अच्छा मोहम्मद इब्राहिम नोहरी भाई हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। ऐसा तुम फेसबुक ती बुधी वठना कयो नी असा के बाबा, फेसबुक ते असा जो आवाज क्लियर इंदो आहे ये ना। अच्छा दर्दे दिल कहती है बचपन में जब अम्मी जबरदस्ती स्कूल भेजती थी तो पड़ोसियों के घर की घंटी बजाते हुए जाते थे गुस्से में। अम्मी जो गुस्सो मन उन्होंने कटना हो यार। सही सही सही सही। कहते हैं काम काज नहीं मैं सिर्फ काम करता हूँ, काज दर्जी पाणी कराइंदो आ। या भी गाल है बाकी मुँह करे सोचो कौन हो। अब्दुल रहमान हमारे साथ ही, वालेकुम असलम। प्रोग्राम तमाम बुधो पया लाड़कानी खान तमाम जो प्रोग्राम भलो आए जी, थैंक यू सो मच। आबिद परियास्ती हमारे साथ ही, सो गुड शो, थैंक यू। अच्छा हिपी कहती है आरजे मेरी दोस्त आपके बारे में पूछ रही थी तो मैंने भी बताया आपके बारे में, उसको समय शामिल कैसे होना में कैसे शामिल होता, मैंने बताया कि प्रोग्राम में कैसे शामिल होना होता है। वैसे मेरी दोस्त भी आपका शो सुनती है, वो भी जल्द आपके प्रोग्राम में शामिल होगी। चलें जी, उनको भी मोस्ट वेलकम किया जाएगा और आप दोनों को बहुत शुक्रिया वेलकम के साथ।
1: कर दिए बलिए गल्ला समझा मैं तेरी अखियां अलग दे जिने
0: जिती। अब्दुल रहमान कहते कैसी है, मैं ठीक हूँ जी, आप बताएं। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए और डी स्किन ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के बारे में जरा सोचिए। अनवर भाई कहते हैं टॉपिक नो टेंशन नो क्राई नो बिजली के बिल का खौफ ना जॉब की चिक चिक और ना ही जिंदगी में क्या करना है वाली वजूदी बहरान। पिज्जा का आखिरी स्लाइस छीन कर खा लो तो कोई कुछ नहीं बोलता, बस बोलेंगे बच्चा है खाने दो। 10 रुपए में बादशाह थी, जेब में 10 रुपए का नोट होगा और तुम्हारी वॉक ऐसी रहेगी जैसे पूरे मोहल्ले के सीईओ तुम ही हो। हाँ भाई, बात में वैसे दम तो था, ऐसा ही होता है। बचपन के दिन जो है ना वो बहुत कमाल के दिन थे। अगर किसी का बचपन अच्छा ना भी गुजरा होना लेकिन फिर भी वो आज के टाइम करके ये जरूर बोलेंगे बचपन बचपन था।

ओके प्रोग्राम सुन रहे वाइटेशन टी स्किन ब्यूटी शो ॿुधायो कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया अली मुर्तज़ा कहिड़े टॉपिक पर बचपन वापस मिल जाए तो बहुत कुछ है उनमें से एक चीज जून जुलाई की छुट्टियां जो हमेशा गांव में गुजरती थी खुली फिजा खुले मैदान और क्रिकेट खेलना क्या बात है अच्छा कहते हैं सॉन्ग प्ले करना शमन मिराली ही हसी जिंदगी ये गुजरी वही है हे हलायूं था बिल्कुल योगा मूसा भाई कहते हैं अदी पकोड़ा खा मां वैसे कराची जा पकोड़ा सो खाओ सबर जो फल मैं न मिलो आ लगे तो हाँ बिल्कुल में जूस हूँ ممتاز کہتے ہیں کہ اجالے اپنی یادوں کے رہنے دو گلی میں زندگی کی شام ہو جائے برہوی اوچے گائیں گے ٹھیک ہے

अच्छा ऐसा के थे पश्तो में करे सब दुआ कर ला करे उनची लाइट बने हली तो आवाज सही छे नहीं तो मतलब भी माई मतलब जको आ सो न तो लाइट हली बने उनन हो असा मांगे कन थाना बिना थिंदो अच्छा भला

ਬੁਧਾਇਓ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਖੇ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਉਹ ਖਾਨ ਚੌਕ ਲਾਡ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਉੱਠ ਮਸਲਾ ਮਾਸਟਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜੋ ਗਾਣਾ ਹਲਾਇਆ ਥਾ ਬਾਬਾ ਕੇ ਸਾਥ अनवर भाई कहते हैं घर के काम चल रहे ना इसीलिए बिजी रहता हूँ. आज काम का आखिरी दिन है. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. ये एक ऐसा मतलब डिस्टर्ब के अडी गी पार्टी घर ठहराइंदा अगली तान सबर के सलामत.

0: ये स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर निया जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
0: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स आइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
3: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
4: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
3: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल हम नवा बहुत जल्द
1: ब्यूटी शो स्पॉन्सर किया जा रहा है वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। बिल्कुल सुना था प्रोग्राम के लास्ट लेग में आ चुके हैं जिन लोगों ने अभी अभी सुना है।

अजीज सोलंकी जी, शो आपका वेरी वेरी नाइस है, मेरे को खासी उम्मीद भाई है उसके लिए, थैंक यू अली मधुपी प्रोग्राम ओ हो और साओ थैंक्स फॉर माई भंड अली मधुपया फायसा मधुपया।

0: ये गाना बहुत अच्छा एक ये गाना है और उनका अलावा ही गानों सबनी जो फिल्म जाना किया करें जिस आवाज हमारे साथ है अलहमदुलिल्लाह मला वाशा लिखते हैं कि हमसे मत उलझा शराब ना चाहिए ओके जी अली अकबर बरोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरेन से थैंक यू वेरी मच एसन अली बुक्टी हमें सुन रहे हैं लाड़काना से थैंक यू दीदार अली बरोही आप हमारे साथ साथ हैं हजार भाई कहते अदी थी सगे ही सॉन्ग लगाए तो यो गानो अगर हिन्ना प्रोग्राम में ना ले तो पंजे बजे वाले प्रोग्राम बुधूं था ठीक है शायरी लिखी है प्रोग्राम बुधी हमारे साथ इमरान भाई आ चुके हैं वाले भाई कैसे हैं हेलो वासव भाई कहते हैं नंढपण भली हुई सब गोठ जा बार खेड़ा हुआ सी जडे रांद बस कंदा हुआ सी एक बे के मिट्टी जा बुक भरे हणंदा हुआ सी अपनी आबी हमेशा खुश रहे नसरुल्ला भाई कहते हैं बाजी तां की खबर आ मां एक बदक वठी आई आ बदक छो वठी आया हो रीजन चाइना जे पोया लुबी कहते से दो घंटा गुजरी वया पर पता ही दिसरी ना तां की खबर बस मिले आ आसान त भी बड़ी चॉकलेट डाल के दिए हम भी ऐसा करते थे पहिरियों इंसान आहे न बचपन त मुंहिंजो ठीकु ठाक गुज़रियो अहिड़ी का बचपन पर मां मतिलब चवंदमि त मुंहिंजो जेको कॉल आई मां इंट्रोवर्ड हुयमि न मतिलबु या फिर सो हिन जे करे काइड़ी बट माण्हू जो बि प्रोग्राम जेको ख़तमु थी पंजे बजे वारे प्रोग्राम में सो पंहिंजो त मां माज़रत कयां सो मोकिलाणी नाहे बाबू सलाम हाफ़िज़ बाय बाय एंड टेक केयर
1: अब आप फिल्म केटी
2: साहब फील्ड मार्शल सैद क्यू में पीपल्स अलग्राम मल्हाई वई वेत पाबंद फौजन जे सरबराहन फील्ड मार्शल चयो त आर्मी इलाइक़े अमून रियल एस्टेट जग मुफ़ादन जे

0: न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 91.6।
2: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: देखी बनी है आवाज
0: जीए एफएम नेटवर्क
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए फरार इतवार रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: ये

0: देखिए ड्रामा सीरियल
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: Yeah!

0: खुशी और सुकून पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये तो बांटने से बढ़ते हैं।
1: वार दिनों पे करते नहीं।
2: It's 4 PM.
3: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
4: फ़क़ीरी नीम प्रिकली हीट सोप।
5: फ़क़ीरी नीम प्रिकली हीट सोप। फ़क़ीरी नीम प्रिकली हीट सोप।
4: जुड़ियो चायो कील महासो और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
5: फ़क़ीरी नीम प्रिकली हीट सोप, गर्मियों में थी निखार।
4: फ़क़ीरी नीम प्रिकली हीट सोप
5: साफ करने वाली घुमरियों को कम देता है। फ़क़ीरी सोप
4: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अदली से वजीर आजम बने तो फिर तो ये भी बात होती है कि कोई पहली दफा बना था आजम ने जो उन वोटों को हम तो सदन ये है वो किस फखरदार जो है वो है एक दूसरा खत्म हो चुका है ये सिस्टम। ओ भाई ये 30 जो है वो तुम कहां पहुंचे हो हमें आगे पता चला बिल्कुल खराब है। ये
2: वजीर अजम राणा और शहीदुल्कार भुट्टो वजीर अजम थियण जो तान नकवी ते भी तनकी जफराबाद में चूं जलसे के खिताब
0: साथ जिंदगी पर
3: केटी की है 1.6।

0: स्लोगन।
1: देखिए नया ड्रामा सीरियल पागलखाना 29 जनवरी से रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 4:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream, असली ग्लो हर नया जोशो, a product by Biocon International Pakistan.

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
2: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
1: अब दर्द को कहें अलविदा
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
1: जी हाँ,
2: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
1: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
2: ये ऑइंटमेंट
1: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
2: दर्द, सोजिश
1: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
2: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
1: गर्दन और कमर की तकलीफ,
2: पट्टों के खिंचाव, मोच,
1: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
2: और जल्दी जलन में मुफीद।
1: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मरतबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
1: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबिले एतमाद मयार।
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
4: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
3: GA FM नेटवर्क,
4: सिंध की आवाज़।

0: जब दिमागी नॉर्मल ना हो तो फिर कुछ नॉर्मल नहीं होता, और यही बात इसको समझ में नहीं आ रही।
1: मेरी बच्चियों की खुशियों को नजर ना लगे,
2: हो गई बर्बाद मेरी खुशियों को आग।

0: उसके भाई को मारा है तुमने, अब उस लड़की की खातिर हमें मार दो, मार दो हमें।
1: जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता है, सारे को तो हम खो चुके हैं, तुम्हें नहीं खोना चाहते।
2: उस लड़की को ढूंढने में उसका सुकून है, जो लड़की उसको नहीं मिलेगी खुद ही सुकून आ जाएगा उसे।

0: स्वामी को ढूंढना चाहता है। मैं तुम्हें ढूंढने नहीं दूंगी।
1: दिल से तो नहीं निकल सकते, जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: सीरियल ग्रे 4 दिसंबर से पीर और मंगल रात 9 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: ये भी तो जुल्म ही हुआ ना कि इंसान को दिल में कोई और बसता हो और तो किसी और को उम्मीद दिलाता।
1: मैंने हमेशा आपके लफ्जों पे इत्मीनान किया, कभी भी आपके दिल में झांक कर नहीं देखा कि मोहब्बत के जिस इजहार में आपने मुझे बांधा था वो तो कब का।

0: पर्दा पर्दा पर्दा, जब से रिश्ता जोड़ा है इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना के रखती है।
1: बस कर दो दुर्दाना, बस कर दो प्लीज।
2: खाओ मेरी कसम, तुम उसके बारे में नहीं सोचोगे।
3: दिल की सदा तो रोके दीवाने, मगर क्यों चाहतों के रास्ते।
4: अगर वो आरिस की मोहब्बत से वाकिफ तो मेरी मोहब्बत से वाकिफ क्यों नहीं है वो।
1: आशा।

0: तुम्हें बर्बाद कर देगी।
1: अगर मुझे ना मिली तो बर्बाद हो जाऊंगा।
2: उस बेचारी का कसूर यह है कि वो शैतानों की बस्ती में अपने लिए इंसान तलाश कर रही थी।
3: बच्ची की रूह को चलने की है, उसके पाकीज़ा किरदार पर खींचड़ उछाल लिया तुम लोगों ने। अल्लाह ताला तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा, देखना।
0: मैं ना पैरों के सामने तमाशा बन गई मामा।
4: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए मोहब्बत दाग की सूरत, बुध की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।